साल कार्तिक दुई गते सोमबार, समय दैनिक बिहान 7 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म। स्थान नेपाल मानव धर्म सेवा समिति उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती। थप जानकारी तथा कलश दान व्यवस्थापनका लागि सम्पर्क 98512 45 779, 98549924 09, 98449994 13, 98146699945, 98446056550। आयोजक नेपाल मानव धर्म सेवा समिति, जिल्ला शाखा आश्रम दोलखा, उपशाखा आश्रम सुन्द्रा।

दा हमको चला तेरी ड्रेस की मैचिंग लाया कार ऑफर अब तू कर स्वीकार जो तू कुड़ी बड़ी फैंसी तेरा यार भी है सुपरस्टार।

0: बनाउली म आफ्ना बैरागले गाउँछु बस आछ बनाउली
1: काठे सागो चुनुक चुनुक जुत्ता भड्कुनाले मेरा साई पराया भया।

विशाल श्रीमद भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ में सादर निमंत्रणा। नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिला शाखा आश्रम दोलखा को आयोजना में धर्म जागरण, पितृमोक्ष, सत्संग भवन निर्माण र दैविक प्रकोप विपद कोष स्थापना को पावन उद्देश्य सहित श्रीमद भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ को भव्य आयोजना हुन गइरहेको छ। यस महायज्ञमा विशिष्ट वक्ता प्रमुख वाचक पण्डित श्री डिलीराम गौतमज्यू को मुखारविन्दबाट सुमधुर संगीतमय भजन कीर्तन र कथा प्रवचन श्रवण गरी तन मन र धनको पुण्य कमाउने सुवर्ण अवसर नगुमाउनुहोस्। कथा आरम्भ मिति विक्रम सम्वत 2083 साल अश्विन 25 गते आइतबार। सम्पन्न हुने मिति विक्रम सम्वत 2083 साल कार्तिक 2 गते सोमबार। समय दैनिक बिहान 7 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म। स्थान नेपाल मानव धर्म सेवा समिति उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती। थप जानकारी तथा कलश दान व्यवस्थापन का लागि सम्पर्क 98 5 12 45 779, 98 49 924 09, 98 44 39 94 13, 98 41 96 89 45, 98 44 46 56 50। आयोजक नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिला शाखा आश्रम दोलखा उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती।